श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्री अलक पुरुष महादेवा की जय। श्री शिवानंद जी महाराज।

श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी महादेव की सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलखपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की।

होली श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वर

0: या विच
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
0: Tizenegyszer Om lesz.
1: There are different centers.
0: Vannak különböző központok.

0: अनंत ब्राह्मण्ड की रचयिता, सृष्टि के पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय पूज्यपाद, प्रातस्मरणीय हमारे घनिष्ठ मित्रों में, हमारे घनिष्ठ प्रिय गुरु भाई और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचंद्र जी महाराज की परम कृपा से आज हमारा यहां आना हुआ। पूज्य स्वामी जी की कृपा से हम सभी लोगों को, जो विशेष करके भारत से आए हुए हैं, अभाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्यपाद का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। आपका बहुत प्रेम है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम छुपाया न छुपे, प्रेम करे प्रकाश, दाबी दुबी रहे नहीं कस्तूरी की बास। तो प्रेम कभी छुपता नहीं, तो उसी प्रेम के साथ में, उसी प्रेम वाणी से आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे योग के बारे में। पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री ने योग की महिमा गागर में सागर भर दिया। योगा कर्म सुकौशलम, योगा अग्नि कर्म दग्धानी। योग के बिना मानव का जीवन सफल नहीं होगा। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गुड इवनिंग। आई हैव टू स्पीक नाउ लिटिल बिट इन इंग्लिश बिकॉज अवर भक्तास फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम विथ मी एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वुड लाइक टू हियर व्हाट आई एम टेलिंग और टॉकिंग। You all speaks English very good because you live in America. And Swamiji need not to understand because he is in his inner dhyan mein sab kuch mil jata hai. He knows what I am saying, that's enough. Theek hai na?
1: Perfect.
0: और उसमें अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे लिए समथिंग, थैंक यू। योगा, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म के द्वारा हम योग की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराजा भर्तृहरि, व्हेन ही बिकेम ए सन्यासी, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग। देन ही सेड, आई वुड लाइक टू पे माय रिस्पेक्ट टू ऑल देवास, ऑल गॉडेस। बट देन ही सेड, बट ऑल द देवास, ऑल द गॉडेस, दे are bounded by karma. Okay, then I will pray to God, Brahma, Vishnu, etc. Then he said, Bhagwan, jinhane avatar liya hai, two kinds of incarnation, Nimit and Nitya. So why should I not pray to the God? Then he said, no, God is also bounded by karma. Shashi dalaraha, shame dalaraha. Lakshman ki pran jaraha. Hanuman kab aoge? Na malum meri kis janam ki karam phal raha. Tab Bhagwan Ram bhi ye keh rahe hai. To, yes. So the Maharaja Bhartri, he became monk, sannyasi. So now he thinks, I will pay my respect and adoration to the Supreme who incarnated. Then he said, but they are also bounded by karma. There is a story in the holy book Ramayana, and where there Bhagavan Ram is saying that Lakshman's, this story next time I will tell you perhaps. Then the Maharaja Bhartri, the King Bhartri said, why I should not pray and respect the karma? Bhagavan bhi karam se bandhan mein hi hai. तो मैं कर्मों को क्यों नहीं नमन करूं? इसीलिए the action is the greatest. Time will not wait for anyone and the karmas will not leave you free at all. Therefore, where the action is, there's a reaction. And when there's a reaction, there's an action.

our immunity in the body. Vajranadi controls our Ida Pingala Sushumna. Vajranadi controls our heart that we don't get a heart attack, and also brain hemorrhage. Vajranadi begins from the big toe and second toe, and it goes through and is supporting the Sushumna Nadi. Like when we build a building and we have earthing cable. So Vajranadi is like an earthing, so there is no any bad things, attack happens to our body or mind. And therefore, you have to practice those certain postures of yoga that you can avoid such accidents. Mind. Let's come to the man. Man kya hai? Man lobhi, man lalchi, man chanchal. Man chor. Man ke mate mat chaliye, ghadi palak, man on. Man lobhi, man lalchi, man chanchal, man chor. Man ke mate na chaliye, ghadi palak, man on. Mind is a greedy. Man lobhi, man lalchi. Mind is full of the desires. Man chanchal, mind is restless. And man chanchal, man chor, and mind is also the thief. No? Chori kari deta hai. Bhagwan Krishna bhi usko nahi rok sakta hai, chori karne mein man makhan chor deta hai. पता है भगवान को कि मक्खन चोरी कर दिया और हमारी मैया को जाकर के वो सभी शिकायत करेंगी. तो मन चंचल, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर. मन के मते न चालिए, डोंट फॉलो योर माइंड, क्योंकि माइंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दैट्स इट. व्हाट इज अ माइंड? मन का देवता चंद्र. दैट्स वाई बिसाइड मी हरिचंद्रपुरी जी महाराज. देखिए, वो हमारे देवता है. ही इज कंट्रोलिंग. इसीलिए तो ऐसे महान पुरुष पास में बैठते हैं तो हमारे को सावधानी से बोलना पड़ता है. एवरीथिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ द माइंड इज द मून. एंड मून इज एवरी डे व्हेन मून कम्स आउट और मून राइजेस नेवर इक्वल. चंद्र हमेशा एक सरी का नहीं आता है, घटता बढ़ता रहता है. वैसे मन जो है संकल्प विकल्प करता रहता है. यही मन का धर्म है, क्योंकि मन चंद्र से मिला हुआ है. एंड मून मीन्स इमोशन. इन मोशन यू आर ऑल द टाइम्स इन द मोशन. इमोशन एंड इमोशन मीन्स वाटर. सो चंद्र जो है पानी का प्रतीक है, और वो जल जो है पानी वाटर, वो वाटर इज चंचल मूविंग. There are the waves, so you are in the motion is the emotion. But what kind of a motion you have, sometime is a hurricane or a flood. Raja Yogi Agni Jal, jiski ulti reed. Raja Yogi Agni Jal, jiski ulti reed. सावधान से परशुराम जी कह रहे हैं कि थोड़ी देखे प्रीत, इनसे आप ज्यादा दोस्ती मत करना. राजा भी ठीक है, कभी होते होते वो लगा देता लात. हाँ, वो नेता होता है ना, नेता तो टिकट की समय तो आएंगे. हाँ बाबूजी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, ऐसे है. जीत गया उसके बाद तो हाथ नहीं मिला था या टेलीफोन भी नहीं मिला था. ये बातें होती है.
mind.

0: Now, what is the mind? So, mind, हमारा जो है, mind is like a camera. He's getting all the information and transferring to the subconscious. And what is the hidden written in the subconscious brings up and gives to the consciousness, intellect, buddhi. And what is a buddhi? Buddhi ka dharm kya hai? Buddhi ka dharm hai uska judgment dena. So intellect gives the judgment and mind brings and goes. Therefore mind has no responsibility. It's only coming and going, coming and going, coming and going. So that is a mind. Intellect is giving judgment, but viveka, that is which leads us further. So yoga, asanas, pranayam, chakras, muladhar, svadhisthan, manipur, anahat, visuddhi, agya, bindu, or sahasrar. These are the eight chakras, which is very important in our body. So yoga, anant hai. Anant hari katha. Saath mein aata hai asan. Asan. Pranayam, dhyan, dharana. To asan kai prakar ke asan kehlate hain. Ye Maharaj Shri ka jo ye gaddi bichhi hui hai, isko bhi asan hi kehte hain. Maharaj ji, aap kya asan pe baithiye? Wo bhi asan hai. Aapka asan kahan lagega, raat ko sehan kahan karoge, wo bhi asan hai. Aur postures jo hai, wo bhi asan hai. आसन की परिभाषा बहुत कुछ है, लेकिन मेडिटेशन करते समय काया स्थैर्यम, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, मोशनलेसनेस ऑफ द बॉडी, फिर मेडिटेशन होता है. ये गिलास पड़ी है, गिलास के अंदर पानी है, गिलास स्थिर है, पानी भी स्थिर है. गिलास इज मोशनलेस, द लिक्विड इनसाइड इज ऑल्सो मोशनलेस. But as soon as I take, glass is moving, liquid is moving. Similarly, if our body is comfortable and motionless, our mind is also steady. Sankalp Biklap ke andar mein dhire dhire dhire dhire dhire dhire aata jata hai, phir meditation ho jata hai. So that's a long way. Asana. अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो स्वामी जी कहेंगे बाबा जी को माइक दिया और पता नहीं कब तक पकड़े रहेंगे. तो अब बस हो गया पूरा. धीरे से आपको कुछ बताता हूं, सभी बैठे हैं. अरे आए तो खाली बातें करने से कोई भूख थोड़ी मिलती है, मिटती है भूख, मिटते क्या? बातों से भूख नहीं मिटती है, बात करने से पेट नहीं भरता है. Tons of theory is nothing. Tons of theory is nothing compared with the grain of practice. तो खाली बातें करते जाओ, पेट नहीं भरेगा. अरे कुछ खाने को तो दे, एक भी चना दे दो तो कम वो पेट में जाएगा, तो कम से कम वो तो थोड़ा काम करेगा ही. भूखे को बताते जाओ कि हाँ श्रीखंड आ रहा है, ओहो हलवा आ रहा है, पूड़ी आ रही है, और क्या आ रहा है, अरे समोसे आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, अरे जलेबी भी बन रही है. वो भूखे के बेचारे के पेट के अंदर में आवाज हो रही है बादल की तरह, लेकिन आया क्या? कुछ नहीं आया. डपोट संघ का नाम सुना आपने? आप लोगों ने डपोट संघ का नाम सुना? महाराज जी आपने सुना?
1: नहीं, अभी तक नहीं सुना.
0: सुना दूं? हाँ देखिए, ये भी तो बात है. हमारे मारवाड़ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहते हैं डपोल संघ. कावद है कि नहीं? तो डपोल संघ

की बात कर देता हूं, फिर आपको फिर प्रैक्टिकल दे दूंगा, ठीक है? एक आई एम टेलिंग इन हिंदी, ओके, सो दैट आफ्टर यू विल आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, सो टू क्रॉस आई विल मेक समथिंग कॉमेंट्री वेरी क्विकली सो यू विल अंडरस्टैंड. एक गरीब आदमी था, गरीब था, काम तो करता है लेकिन पैसे इतना नहीं मिलता है. तो उसकी पत्नी को उसने कहा कि आप ऐसा करो, यहां जो कुछ ये पैसे देता हूं काम करना, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान मेरे को बहुत कुछ पैसे दे देंगे. समुद्र के किनारे जाकर के भगवान का प्रार्थना कर रहा है, ओम नमः शिवाय. भगवान शिव जी तो भोलेनाथ है ना, सबसे जल्दी वरदान कौन देता है? शिव. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः.

ओह शंकर भगवान प्रकट हो गए जल के अंदर। बोलो भक्त क्या चाहिए, कि आप अगर शिव जी हैं तो आप अंतर्जामी सब कुछ जानते, मेरे को क्या कहते हो कि क्या चाहिए। प्रभु दे दीजिए, मैं लेने के लिए आया हूं और आप देने के लिए प्रकट हुए हो। अच्छा भक्त, तू मेरा भक्त है, ये शंख लेके आया हूं। ये शंख इतना चमत्कारिक है, ओहो प्रभु प्रभु प्रभु, हे दीन दयाल, क्या कहना है। आपकी माया, शंकर भगवान महादेव की माया है ये, क्या करेगा ये। अरे भगत, इस शंख की पूजा करना, गंगा जल से धो लेना या पानी से, कुएं का पानी से धो लेना, और अगरबत्ती लगाना, फूल पुष्प चढ़ाना, और फिर कहना कि हे शंकरदेव, मेरे को 1000 रुपये की आवश्यकता है, तो वो तुरंत 1000 रुपये का नोट आ जाएगा। हे शंकरदेव, मैं भूखा हूं, मेरा परिवार भूखा है, तो हमारे सभी के लिए बना बनाया कैटरिंग आ जाए, जैसे आ जाएगा। तो कहा कि हाँ वो आ जाएगा, कि हे प्रभु कृपा कर दी, कपड़े भी मंगा देंगे, सोना दागिना भी मुला, सब जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा बेटा। बस प्रभु यही चाहता था। भगवान शिव अदृश्य हो गए, और क्या हुआ कि वहां वो शंख लेकर के गांव की तरफ, घर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 4-5 दिन के बाद, आइए 4-5 दिन के बाद में कोई गांव आया, उसके बाद दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मित्र। भाई देखो, कभी परीक्षा जब भी होती है कि मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं। हमारे ग्रंथों में कहा है, धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। धर्म धीरज मित्र और नारी, आपतकाल प्रकयोंचारी। अरे एक मित्र की परीक्षा जब होती है, नारी की परीक्षा जब होती है, धीरज की परीक्षा जब होती है, कि हम किसी न किसी संकट में है, तो दोस्त के वहां गया। तो दोस्त कहा, अरे भाई बहुत समय से आए, क्या बात है, कहाँ चले गए थे, कि ऐसी ऐसी बात है, भगवान शिव मिल गए। अच्छा शंकर दादा मर गया क्या। हाँ मर गया बापू, तो शू गया शंकर दादा ने, शू कही है, लाडवा खवाड़े शंकर दादा बहु। अच्छा अरे ऐसे ही है, देवी देवता क्या करते हैं, देंगे हैं क्या। अरे शंख दिया है कि बताओ, हे शंख भगवान हमारे।

मित्र के घर के अंदर सभी मिलकर के आठ और मैं नौ, सभी के लिए अच्छा बढ़िया ताजा स्वप्न भोग थाल में पुरसा हुआ लेके भिजवा दीजिए। आ गया। अरे वाह, कपड़े मंगा दिए, आ गए। 50,000 मेरे मित्र को देना चाहता हूं, आ गए। मित्र कहता कि हाँ भाई, ये तो चमत्कारिक चीज आ गई। भोजन किया, सो गए। अब वो रात को नींद नहीं आ रही है, किसको? मित्र को, कि मैं कैसे करके उस शंख को मैं ले लूं। गया दूसरे दोस्त के पास, कहीं रात को दुकान पे गया और एक इतनी साइज का एक शंख लेके आ गया। आकर के वो थका थका था वो भगत, तो क्या किया उसने कि उसकी थैली में से वो असली शंख को तो निकाल दिया और वो जो नकली से लेकर आया उसको उसके झोली में डाल दिया। 10-20 घर का वहां शंकर भगवान के दिया हुआ शंख को वहां टेबल पे रख करके पूजा करी। हे शंख भगवान, हमारे भाई बहन जितने सभी खड़े मेरे गांव के, सभी को पहले भोजन करा दो। कुछ नहीं। अरे शंख भगवान, कराओ ना, क्या कराए? और वो इतना निराश हो गया, वहीं से शंख को लेकर के गया समुद्र के किनारे और शंकर भगवान को कहा, ये तेरा शंख मुझे नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, अरे मेरा भगत, मेरे भक्त को दुख हो रहा है, भगवान नहीं चाहता कि भगत दुखी हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, वापस बोला, हे भगवान भगत, क्या मुझे नहीं चाहिए आपका शंख? अरे बेटा, तेरा शंख वो चुरा गया तेरा दोस्त, असली उसके पास है, नकली अंदर डाल दिया। तो मैं क्या करूं अब? क्या करे क्या, मैं दूसरा शंख देता हूं। अरे वो क्या करता है शंख? अरे उसमें तो चमत्कार डबल है बेटा। कि वो क्या है भगवान? कि मांगना 1,000 रुपया, तो वो कहे 1,000 से क्या 1 करोड़ ले लो ना, अभी बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, लेके जाओ, लेकिन सावधान, देता कुछ नहीं है, वो केवल बोलता है। शंख बोलता है 1,000 रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये ले लो, 1 ड्रेस की जगह वो कहता 10 ड्रेस ले लो। के लाओ देओ, कि क्या धक्का दे? धक्का को समझते हो, किसी को धक्का देना ना? अरे तू क्या नहीं दे रहा है? कि नहीं, मेरा नाम है डपोल संत। अब वो लेके गया वापस दोस्त के पास, गया रात्रि विश्राम किया। अरे दोस्त का कैसे आ गया इतना जल्दी? बोला कि भाई इस बार तो एक चमत्कारिक चीज और मिल गई। अरे वो क्या है? अरे मांगे 1 और दे अनेक। कि यह ऐसे कैसे हो सकता? कि देखिए, हे शंकर भगवान, आज हमारे घर के अंदर 10 किलो सोना आ जाए। तो भगवान शंखदेव कहते, अच्छा भक्त, आशीर्वाद है, लेकिन 10 किलो से क्या होगा? 1 टन सोना ले लेना, ले जाओ, 10 सोना आ जाएगा। कि बस बस बस बस, इतना ही चाहता था भगवान, उसको दे दिया। अब वो कहता कि ये शंख बढ़िया है। दूसरी दुकान पे गया लेने के लिए, तो बोला कि अब तो कोई शंख है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जो वो दूसरा पुराने वाला शंख था उसको तो उसकी झोली में डाल दिया और ये नकली शंख आया वो उसको दे दिया। अब दूसरे दिन वो तो चला गया। दोस्त ने कहा, हे शंख भगवान, मुझे 10 किलो सोना चाहिए। क्या 10 किलो के 1 टन ले ले भाई? कि हाँ दीजिए। कि क्या धक्का दे? अरे ये क्या है? कि ये क्या, मेरा तो यही काम है मुंह से बोलना, देना नहीं है। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है डपोल संघ। तो तब से डपोल संघ बना, खाली खुली खुली बातें करता है, वो कुछ नहीं करता। क्यों साहब जी? डपोल संघ। तो डपोल संघ जो था आ गया, चला गया। तो इस प्रकार से धर्म धीरज मित्र और नारी आपतकाल प्रकहियों चारी। तो जो हमारे धर्म की रक्षा करने वाला है, हमारे मित्र हैं।

हमारे साथ में आपके जोड़ा हुआ है, ये सब उस समय उनकी परीक्षा होती है, नहीं तो परीक्षा नहीं होती है। साथ ही साथ अब छोटा सा योग का अभ्यास करा देते हैं, ठीक है ना? कराऊंगा जरूर, वो मैं डपोल संघ वाली बात नहीं करूंगा अब। ऑलराइट, सो वन पुअर मैन टोल्ड हिज वाइफ, यू स्टे एट होम, आई गो समवेयर एंड डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी एंड गॉड विल गिव मी समथिंग, वट एवर आई विल आस्क गॉड विल गिव एंड आई विल कम एंड बैक। सो ही वेंट टू द बीच, वॉज सिटिंग नियर द ओशन एंड ही वॉज सिंगिंग शिवाज नेम, नमो शिवाय नमो शिवाय। शिवा अपियर्ड, से वक्ता माय डिवोटी ब्लेस यू, व्हाट यू वांट? ही सेड आई वांट मनी, आई वांट दिस दिस, आई एम वेरी पुअर। सो भगवान सेड ओके, आई गिव यू दिस कॉन्स एंड व्हेन एवर यू वांट समथिंग टेल दिस कॉन्स, मेक पूजा, क्लीन फ्लावर्स, इंसेंस एक्सेट्रा एंड देन you will prayer and he will give you everything, money, food, cloth, anything. Thank you Lord, thank you, thank you. He went, on the way he had one friend, he stayed overnight there, and what he told the friend, what is this? So in the night the friend took away the real coins and put in the fake coins, and then the man went next day. After a few days he reached his village and he said, village people, now I have a siddhi, perfections, God gave me everything, now I invite you all for the lunch, a beautiful buffet. So he said, hey Shankadev, oh Lord, please provide the best food for all. And there's nothing happened. Because the real coins he took it away. So man was disappointed very much and he went again to the ocean, and then Shiva gave him another one, and that one is that whatever you ask to have, if you ask for $1,000, he said, no, take $5,000,000. So you don't have to ask always. So he said, okay, give me please. He said, what? I can't give you anything, I'm only speaking. I'm not giving. Only promising, but there is nothing. So that is in Rajasthan, in Hindustani language, is some kind of a joke. So you know why? Because people are sleeping. And then Swamiji gives such a nice chutakla. Wo chutakla kya hai? Wo bhojan ke andar chutney. चटपटी, चटनी किया तो वो जीभ के अंदर में फिर स्वाद आ गया। ऑलराइट, नाउ एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, तो आप सीधा बैठे, वेरी गुड, सिट स्ट्रेट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। Now, stretch your legs. बिल्कुल सावधान, आपको बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज बता रहा हूं, बट इज पावरफुल, ठीक है? सो कुर्सी पे बैठे हैं, वो कुर्सी पे बैठे रहे, घुटने को जोड़ दो, yes. और लेग्स लिटिल स्ट्रेट आउट, पैरों को थोड़ा लंबा कर दो। बहुत अच्छा। इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप एंड इंटरलॉक योर थम्स, स्ट्रेच योर हैंड्स मोर अप, तो ये साइड मसल्स

stretching and hands down. Hand down on the thighs. Once more, inhale and exhale. Inhale exhale. Inhale and look up to the ceiling. Exhale. Now inhale and stretch your hand sidewards and above the head. Exhale in the front, hands down. One, inhale. Exhale. Yaad rakhna, bolna mat. Swaas lijiye ek aur do. Dusra tha ek aur do. Ab अंगुलियों को कंधे पर रखिए यहां और कहनियों को ऐसे जोड़ दीजिए और इसको रोटेशन करिए, घुमाए एक, श्वास लीजिए ऊपर कंठ और श्वास छोड़िए.

और दूसरी तरफ अब इधर ऊपर से नीचे द सोल्डर ब्लेड शुड टच वेरी गुड बस हैंड्स डाउन तो ये दस दस बार करना है दस बार ऐसे और दस बार ऐसे अब धीरे धीरे ऊपर देखिए श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने थोड़ी को सीना पे लगाइए टच योर एंड कम अप टच द चिन टू द चेस्ट And inhale up. Good. 10 times. Swas lena, sir ko dekhi upar aur swas chhodte hue Jalandhar band. Akashi mudra aur Jalandhar band. Bahut acha, bahut hi acha. Ab पैर जो लंबे किए हुए हैं कुर्सी पे बैठे थोड़ा पैर और ऊपर लंबा कर दो और अपने पैरों की अंगूठे और अंगुलियों से इनको ऐसा पकड़ने की कोशिश करो रूमाल को कॉन्ट्रैक्ट योर टोज एंड रिलैक्स द टोज स्लोली कॉन्ट्रैक्ट द टोज एंड ये इसमें बहुत सर्कुलेशन हो रहा है पैरों के किसी लोगों को एडी में दर्द हो रहा है पैरों में दर्द हो रहा है ये सब चला जाएगा दर्द भग जाएगा कहीं एक दो वन अंगूठा पकड़ो अंगुली पकड़ो कोई सब टू वन अब एक स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू एंड इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल इसको भी 10 बार इसके बाद पैर अलग अलग और अंगूठों को पैरों के अंगूठों को जोड़ दीजिए अब इसे एक सर्कल बनाइए वन टू थ्री फोर फाइव Other direction, one, two, three, four, five. बहुत अच्छा पैर पैरों को जोड़ दीजिए और धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए एक और धीरे धीरे आगे झुकिए जितना झुक सके अंगूठे पकड़िए पैरों के जितना जा सके और इनहेल श्वास लेते हुए वापस ऊपर और हाथ दोनों नीचे एक श्वास लीजिए दो श्वास निकालिए तीन श्वास लीजिए ऊपर चार श्वास जोड़िए अब पीछे झुकते हुए मुट्ठी बांधिए जैसे नैया को नाव को चलाते हैं ना एक
दो, चार, स्लोली पांच। अब हथेलियों को ऊपर रखिए, द पाम्स फेसिंग अपवर्ड, हैंड्स नियर द नीज। जो एक मुट्ठी बांधिए, खोलिए, दो, यस, नाव को चलाते रहिए, क्योंकि अपने गणपति बापू मौर्या इनको बस समुद्र के अंदर में स्नान कराना है, जल समाधि हो गया बस। हरिओम। जितना धीरे करेंगे उतना फायदा ज्यादा रहेगा। उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप का हाथ ऐसे पकड़िए, देखिए अपने हाथ को, देखिए रेखा, देखिए कितनी सुंदर है, वाह। अरे महाराज जी, इसमें तो पैसे पैसे लिखे हुए हैं उनकी रेखा में। अरे वाह। अब इसको बंद करें और खोले, मुट्ठी को बंद करें और खोले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आया। भाई देखो, खाने का बढ़िया हो तब मजा आता, खाने का नहीं तो ठीक है, जंक फूड है, पेट पेट में डालते। क्वालिटी भोजन का वो है, जितना चबाओगे उतना स्वादिष्ट लगेगा, और जंक फूड वो है, जितना चबाओगे तो उल्टी होने लगेगी, इसलिए मुंह कहता

गुड अब ऐसे 1 इंच दूर रखो। अब ऐसा करिए, नीडल मूव होगी नहीं कि नहीं, ऐसा कर रहे हो तो भी कि जैसे सुई नीचे लगी हुई है, और ऐसा करिए धीरे धीरे। वो प्रेशर आता ना, मैग्नेट। और अब क्लोज योर फिस्ट, हैंड्स डाउन एंड कम अगेन अप एंड ओपन पाम। देयर इज नो मैग्नेट, वेज गॉन। सो दिस मीन्स हमारे हाथों का ठंडी वगैरह होती है तो गर्म कर सकते हैं, और अंगुलियां वगैरह सभी दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज दी बेस्ट है। कहीं पेट में या कंधे पे या कहीं दर्द हो रहा है तो इस सेल्फ हीलिंग पावर करके हम यहाँ रख दें तो हमारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, या कहीं दर्द है तो वो हम हमारी एनर्जी को वापस वहां भेजते हैं। तो इनहेल एंड यू गो इन विद द एनर्जी, एक्सहेल and take all the toxins and the pain out, self healing. To bas aaj to itna hi, that's all for today. Session is over, it was 1.5 hours.

की, धर्म सम्राट सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस त्राटक। त्राटक इज वन ऑफ द सिक्स क्रियाज ऑफ हठ योगा। नेति दावती, बस्ति नावली, कपाल बाती एंड त्राटक। त्राटक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन पॉइंट। द बेस्ट इज ऑन द फ्लेम। इट्स वेरी गुड फॉर दोज हु हैव स्लीपिंग प्रॉब्लम। बिफोर गोइंग टू स्लीप इफ यू प्रैक्टिस त्राटक इट विल हेल्प यू वेरी मच। ऑल्सो फॉर बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो चिल्ड्रन अबव

अलकपुर जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन दार, ओम शांति शांति, शांति।

हिंदू धर्म सम्राट परम श्री स्वामी महात्मानंद पुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परम श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए, मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में, जिसके निमित्त आयोजन है, ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री उदित नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से ये ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा, भाग

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा कर के संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आ कर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, ना किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में भूरा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, ये नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जाकर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज, वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं, भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है अर्जुन, उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ मैं, अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसे कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली। कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परमपिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है, एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएँ की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। इसलिए हमको समझने की कमी है, ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं,
एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

0: सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, क्यों नहीं चाहिए? भाई आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उत्तर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें, मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबा जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद लें, जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है। इसलिए आज दिव्य आनंद ले, दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबू जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरुजी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी। We are having divine satsang on behalf of Mahaprabhuji's divine day, Samadhi day, and we all are so fortunate one, luckiest one, that we are having this satsang in Om Ashram, which is the spiritual center of yoga in daily life. Here our dear brother Mahamandaleshwar Sri Swami Gyaneshwar Puriji Maharaj, all dear bhaktas, all the sannyasis of this parampara, I would like to say Hari Om to everyone and welcome to this divine satsang. With the blessing of Vishwa Guruji, we are having satsang at Bhakti Sagar. We have got also blessing of Vishwa Guruji today. Evening he was here, he was blessing us. We had prayer with him and then he said, okay, you do satsang. I'm going sitting there, blessing from there. So Vishwa Guruji is always with us. He's always giving blessing wherever he is. He's always thinking about us. He's always thinking that what my bhaktas, child doing, how they are doing. So with his blessing, we are always doing, or we are always practicing that we do always good. So the divine satsang we are having here, you know, the great rishis, great saints, they come on this earth not for themselves, but they come for the human being, for the creatures who are suffering from this cycle of birth and death, which is always very hard. We are always trying our best to escape from this cycle, that we can liberate, we can know ourselves for the self-realization. But without Guru, without डिवाइन सेंस विदाउट परंपरा वी कैन नॉट नो एनीथिंग. सो वी हैव गॉट अ ग्रेट ऋषि और वी आर बिलोंगिंग टू द ग्रेट परंपरा विच हैज गिवन अस द ग्रेट सेंस एंड द सेंस दे आर शोइंग द डिवाइन पाथ. सो महाप्रभु जी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज शोइंग द वे. यू ऑल हैव मैनी टाइम हर्ड और यू हैव एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ दैट हाउ महाप्रभु जी इज गाइडिंग अस इन एनी वे. आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज फ्रॉम द यूरोप दैट वन कपल दे वर गोइंग थ्रू द कार इन द जंगल एरिया और समवेयर बट दे हैव फिनिश्ड द पेट्रोल और डीजल समथिंग एंड दे कुडंट गो फर्दर एंड देन दे वर रिमेंबरिंग विश्वगुरु जी एंड महाप्रभु जी प्लीज हेल्प अस हाउ वी विल गो टू द होम इट्स डार्क ऑलरेडी एंड नोबडी इज हियर देर इज नो पेट्रोल पम्प नियर अस सो प्लीज गॉड हेल्प अस. एंड सडनली सम गाय केम देयर विद द डीजल और पेट्रोल ही गेव देम दिस थिंग एंड दे वर फीलिंग एंड दे हैव गॉट दिस थिंग ऑयल एंड नाउ दे ड्राइव दे वर ड्राइविंग द कार टू द होम. सो दिस इज द ब्लेसिंग वेन दे सो आफ्टर वन मिनट देर इज नो बडी. सो दिस इज द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ महाप्रभु जी वेन यू हैव अ प्योर प्योर भाव प्योरिटी वेन यू हैव द श्रद्धा विश्वास बिलीव देन इट कम्स टू यू. सो महाप्रभु जी इज ऑलवेज गाइडिंग अस ही इज ऑलवेज गिविंग द डिवाइन ब्लेसिंग्स. आई वॉज टेलिंग दम स्टोरीज अबाउट गुरु कृपा अबाउट गुरुदेव दैट विदाउट गुरुदेव वी कैन नॉट लिव इन दिस लाइफ. विदाउट गुरुदेव वी डोंट नो वॉट टू डू हाउ टू डू वेन टू डू. सो वेन गुरुदेव कम्स इन अवर लाइफ ही शोज अस ईच एंड एवरीथिंग. सो आई वॉज टेलिंग स्टोरीज दैट देर अ सेंट वॉज देयर ही वॉज गोइंग टू अ विलेज एंड देर वॉज वन पर्सन हु वॉज नॉट बिलीविंग इन अ गॉड इन अ सेंट्स. ही वॉज जस्ट लिविंग लाइफ लाइफ लाइक अ एनिमल. यू नो वॉट डज एनिमल ईटिंग स्लीपिंग हैविंग चिल्ड्रन दिस लाइफ इज एनिमल हैविंग. सो ही वॉज ऑल्सो लिविंग लाइक दैट. सो वन सेंट वॉज देयर ही वॉज थिंकिंग दैट आई शुड गिव हिम सम नॉलेज आई शुड ब्रिंग हिम टू द गॉड. सो ही वेंट देयर एंड ही वॉज आस्किंग दैट ओ ह्यूमन डू यू नो हाउ डू आई लुक हु आई एम. देन ही टोल्ड यू लुक लाइक अ बफेलो विच इज इन अवर विलेज. देन दैट सेंट थॉट स्टिल हिज हार्ट इज नॉट क्लीन ही इज सफरिंग वेरी हार्डली सो आई शुड टेल हिम सम मंत्रा. सो ही गेव अ मंत्रा एंड ही जस्ट टोल्ड जस्ट चेंट इट टिल वन ईयर टिल आई कम बैक एंड आफ्टर वन ईयर ही वेंट बैक देयर. देन ही वॉज आस्किंग अगेन सो हाउ डू आई लुक नाउ. देन ही सेड ओके यस नाउ यू लुक लाइक अ ह्यूमन. ओके दैट सेंट वॉज हैप्पी दैट मंत्रा इज वर्किंग ही इज चेंटिंग द मंत्रा सो इट्स बिकमिंग स्लोली क्लियरिंग क्लियरिंग हिज हार्ट हिज थिंकिंग हिज डूइंग. ओके ही सेड अगेन ओके आई विल गो एंड आई विल कम बैक आफ्टर सम टाइम. सो आफ्टर सम टाइम वेन ही केम देन ही वॉज आस्किंग अगेन हाउ डू आई लुक नाउ. देन ही टोल्ड नाउ यू लुकिंग लाइक देवाज. व्हाट यू से देवाज गॉड. देन ही next time when he comes fourth time then suddenly when he saw the guruji he was not looking he came and he ran he just make a dandavat pranam oh gurudev thank you now you are not a human you are not a human body but you are god you have shown me the divine way divine knowledge that I can now see each and everywhere god so that is gurudev he bringing us from the ignorance to the knowledge from darkness to the light. So with the blessing of Gurudev we are also coming to the light, we are also going near to the God. So this is only possible with the blessing of Gurudev. So we all are luckiest one, we are having the divine master in our life एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो व्हाट गुरुदेव इज सेइंग, व्हाट ही इज गाइडिंग अस, हाउ ही इज गाइडिंग अस. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज थैंकफुल टू द गुरुदेव. प्लीज गुरुदेव ऑलवेज ब्लेस अस एंड गाइड अस इन अ डिवाइन वे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन द ओकेजन ऑफ महाप्रभु जी एनिवर्सरी. सो वी विल हैव नाउ सम भजन्स. वी हैव सुखिया बाई हियर, पप्पू जी गर्ग, ऑल द भक्ताज, इंडियन भक्ताज हियर, देवीलाल जी, नरेंद्र जी एंड ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम अवर स्कूल कॉलेज, इंडियन भक्ताज हियर, ऑल कर्मयोगीज. सो एन्जॉय सत्संग. दीप नारायण भगवान की, देव पुरुषा महादेव की. एंड आई फॉरगॉट अवर म्यूजिक टीचर अशोक जी, ही इज सिंगिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल भजन्स ऑफ अवर परंपरा एंड ही इज ऑलवेज कमिंग हियर. सो वेलकम टू डिवाइन सत्संग एंड वी विल ऑल्सो लिसन टू हिम. दीप नारायण भगवान की जय. पप्पू जी गर्ग, कौन गाएंगे भजन? आइए गाइए आप लोग भजन. हाँ भाई जी गाओ.
1: बोलिए सदगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की जय. श्री दीप नारायण भगवान की, श्री माधवानंद जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों की.